दादुम काखमा लसको सा ज्याझो नेपालै छ नेपालै ज्याझो छिनिना छन दिल जी रश्मिला ले प्रविधि दी रविन्द्र ज्याझो सा आ विविध बुख पाखे भने दक्ले ना पांगो बुख वंगु आइतबा भिंग अ सुई निकोगो अनि आदिवासी दि जुलम अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस लुके लस्ता आदिवासी जनजाति महासंघ दगा चाहिँ आदिवासी तेगु धन छात्र संगठन दु पाखे आवानेना ये तस्कहे तजिक आदिवासी दिवस हन अले तुक्सी दक्ले नापा खुला मञ्च यागु ख खला रैली चाहिँ तस्कहे तजिक जुल करीब करीब एक घण्टा सिबे अपोहे दु रैली वइ चोपि तर खुला मञ्च वावया वावोगु कारण चाहिँ तस्कहे ध्यास जुल अन चाहिँ बच्चा माइ पछि जुन अतिसा तुक्सी चाहिँ तस्कहे तजिक थो आदिवासी दिवस हनेगु ज्या जुल विशेषना गुलिना आदिवासी जनजाति नापा आबद्ध आदिवासी जाति त दुबे कपिस चाहिँ फयाफको अपो अन यिंकेगु थथगु जाति बे यिंकेगु कुता जुल नेवाते गुन तुक्सी आतक्क हिउलिना आदिवासी दिवस दक्ले अप सहभागिता थुक्सी जुगु दु ओके लागि दक्को नेवा त सकलसित यो कैको सेवा यो कोहे वगु खन्द त थुक्सी चाहिँ नापसा व सीमित नेवा त विशेषना दे दु नाप स्वापी नेवा त उसको थिनी खस थुक्सी ज्यापु समाज मला ज्यापु महागुथि निसे कया अन साक्य बज्राचार्य समाज माली समाज नापित समाज अनि यो कोहे खन्द त सो रियाली व असि चाहिँ ला ब्यानर चाहिँ अनि बलम्बु मिसापु छ अझै दक्षिणाला त्याफै मको जिमला दे दबु मिसा दबुइला दे दत ओ बाइक न मेगु थि थि थथगु त्वायु ति ब्यानर जना व पि चाहिँ यो कुयो कुहे नेवा त चाहिँ खन्द त ओ चाहिँ त सखे बालागु ख छारा सछि नेवा त हक अधिकारी खेले न्याप्ले लिउन ला खला रैली बनि रह्यो हक अधिकार गेना जुल र गाना छिक पिस अनि स न ते फु तर रैली दै चाहिँ शक्ति प्रदर्शन ख छि चाहिँ सचेत हि जिगु थ हक अधिकार प्रति सचेत छि मालीले चाहिँ हक अधिकारी बारे नवाई जि स लगा चाहिँ ओ छगु चाहिँ बिम्बात्मक ध्यानी हो चाहिँ उपस्थिति खुवाउँला एजा त सहेँ बालाको उपस्थिति छु ल अलि तुक्सी आदिवासी जनजाति दिवस या नारा न थो चाहिँ आदिवासी जनजाति प्रस्तुति कर्मी तेगु सम्मान जीवन व सुस्वास्थ्य या संरक्षण दगा चाहिँ विशेषना परम्परागत रूप प्रस्तुति कर्मी ज्या ज्यान छोपिनीको सम्मान चाहिँ तगु छु ल थो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नारा हेजु ल नेपाल हान मेगुए नारा दु प्राप्त अधिकार रक्षा थौ आवश्यकता पहिचान साहित्य समावेशी व न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण नि झिगु साझा प्रतिबद्धता दगा चाहिँ थो आदिवासी जनजाति महासम्म बिगु नारा जुल तर अन्तर्राष्ट्रिय नारा चाहिँ मेगु जुल यसा थुक्सी आदिवासी दिवस तस्कहे तजिक सम्पन्न जुल अलि अन चाहिँ ठ्याक्कै सङ्ख्या गुली दुर्गा मस्यु तर 35,000 मुङ्केगु ढका चाहिँ अन सुरी जुन ज्याखौँ जुल आदिवासी जनजाति महासङ्घ पाखे ओस्पे अपोहे आदिवासी त रियाली दुथ्यागु रखा चाहिँ दोष्य अनुमानी आएको दु अहिले आदिवासी हक अधिकारबारे यो कोको अन्तर्क्रिया जुल मगर ते यो राई ते यो गुरुङ ते यो थथगु अन थासे चाहिँ विभिन्न विषयले अन अन्तर्क्रिया जुल नेवाते सनस हो अन्तर्क्रिया ज्याझो या त नेवादे दु सोनिग प्रदेश या गोसाले आदिवासी जनजाति या हक अधिकार या विशेष सगो अन्तर्क्रिया ज्याझो जुल अहिले थो चाहिँ कोपुन्दे चोङ्गो प्रतिभा समाज या सातवाकी स्मृति सभाकक्ष जोगु जुल अहिले थो अन्तर्क्रिया चाहिँ नेवान झेलुवा डक्टर पुष्पराज खनिकार चाहिँ म वक्ता कथा थियो जुल बेकल चाहिँ विशेषना थो आदिवासी तेगो थो विश्व चाहिँ आदिवासी ते उपरियागो अत्याचार अलि उपनिवेश व साम्राज्यवाद यहाँ चाहिँ थिथि जाति जनजाति कला संस्कृति मसिकाली चाहिँ भाषा यात्रा नङ्का छुएको क्रम जारी जुया छौँ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत थिथिसँग संस्था वा निकाय आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण या मागु ढका चाहिँ थो निकोगु विश्वयुद्ध लिपा बल्ल आदिवासी हक अधिकार सुनिश्चित याना अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस हनेको चलन हगु ख चाहिँ बेग्लतया दिगु जुल अहिले जल जमिन जङ्गल या नापाङ्गो अधिकार स्थानीय रैथाने आदिवासी जनजाति या त दही दहीको खया त आइलो 169 पाखे स्वीकार या दुङ्का आत्मनिर्णय सहित या आदिवासी हक अधिकार चुडागु ख नबेग्ल अन खना दिल अलि नाप आदिवासी तेगु चाहिँ अधिकार या दस्तावेज कथन क्यागु या युएन ड्रिप त कान त्यागु या नजिस ओके यो खनिसे कया इफपी क्यागु अजागु त ख त अनुवेकमा तयार दिगु जुल खला उब्ले थो चाहिँ दे दबु या थो